0: इडी ससा, उड़ा एड़ा इडी ससा, हाहा पड़के रट्टा, दिल दे शीशे विच जड़ा के मुड़ मुड़ के मैं तक्का। मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा। उच्ची सुच्ची माँ बोली सत्कार इसदा करियो, उच्ची सुच्ची माँ बोली सत्कार इसदा करियो, इसनू भुलण वाली वीरो गल कदे ना करियो। बद के ए मिश्री तो मिठी भावें बोलियां लखां, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा। फुलां वर्गी महक इस दे हर अखर चों आवे, फुलां वर्गी महक इस दे हर अखर चों आवे, एक दूजे नाल सांझ प्यार दी सानू ए सिखावे। जानो बद के प्यारी रखिए, जानो बद के प्यारी रखिए, रुलजे ना विच कखां, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा। हिंदी मासी भूआ इंग्लिश हिसाब ना प्यार जतायो, पर अपनी माँ बोली नू तुसी कुट गल वकड़ी पायो। माँ अपनी नाल दगे कमा के, माँ अपनी नाल दगे कमा के, फिर ना जायो अखां, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा। हरभजन मान ते वारिस वीरे, हरभजन मान ते वारिस वीरे, विरसा जान बचाई, इना जवाना माँ बोली दी कदर बड़ी है पाई। सिर ते सूही दे फुलकारी, सिर ते सूही दे फुलकारी, चुक लईए विच हथां, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडा बिच पंजाबी लिखिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी साडा बिच पंजाबी लिखिया, इसनू पढ़ के वीरो भैनो तुसी भी लै लो सिख्या। मनजीत कहे पंजाबी पढ़ लिख, जस मैं इसदा खट्टा, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा, मेरी माँ पंजाबी बोली सांभ सांभ मैं रखा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जीत कौर जलंधरी दी रचना तो बाद हुण मैं एक बिरहों दा गीत कहण लई हरजीत रूबी जिहड़ी के फतेहगढ़ साहब दे नेड़े एक पिंड दे विच रहिंदी है, उस नूं गुजारिश करांगा ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਹਰਜੀਤ ਰੂਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਰੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਰਹੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਉਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਾਵੇ,

हड़ावे मेरी जान सुख दी, चन चंद राजा तो भी चढ़ आवे, हाय वे मेरी जान सुख दी। खौरे केड़ा रोग मेरी जिंदगी नू लगे आ, हाय वे जिंदगी नू लगे आ। एक एक पल मेरा साला वांगू लंगे आ, हाय वे साला वांगू लंगे आ। खौरे केड़ा रोग मेरी जिंदगी नू लगे आ, हाय वे जिंदगी नू लगे आ। एक एक पल मेरा साला वांगू लंगे आ, हाय वे साला वांगू लंगे आ। तेरे प्यार दी कटार मैनू जिउंदे जांदी मार, तेरे प्यार दी कटार मैनू जिउंदे जांदी मार, नाले चित

जड़ तो पुटते पिछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा

0: धन्यवाद जी।
1: अंत दे दुआबा रेडियो दे तीवें कवि दरबार दे विच पेश हुए सारे कवियां दा बहुत बहुत धन्यवादियां जिन्हां ने अपने कीमती समय दे विचों समा कढ के साडे दुआबा रेडियो दे श्रोतियां नूं नवाजिया ते आस करदे हां कि सदा ही वो इसे तरह सानू सहयोग दिंदे रहणगे ते अंत दे विच हरवंशियों वालों एक बार फिर सारे श्रोतियां नूं ते शायर दोस्तां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा प्यारे दोस्तों आमीन।

अपने खातर दुनिया मर दी मिटदी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: हर पीस सफरी बाद उन्हां दा दोस्त उन्हां दा हमसफर ते उन्हां दे दादा जी दियां रचनावां गाउण वाला जिला है शेरपुर दे शहर गढ़दीवाला दा गायक रिंकू शाह दीवाना। रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज़ दा मालिक है ते इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है, उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है ते ओ जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विच उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है, उस दे नाल उस स्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना भी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है। रिंकू शाह दीवाना जी थोड़ा प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल जनाब। चरण सिंह सफरी पंजाब दे उगे

ले लो, फोन ले लो, हेलो हेलो, मर्जी है सब ले लो, कर लो किश्ता, माउस दी क्लिक तेजी, ओके वाली टिक तेजी, बिना चिक चिक तेजी, मिल जांदे कारजे। हाय हाय हाय, इन्ना सौखा तो कर्जा मिल रहा अजकल, पहला किन्ने हाले उड़े कटने पैंदे सी। माउस दी क्लिक तेजी, ओके वाली टिक तेजी, बिना चिक चिक दे, मिल जांदे कारजे। रब साडे वल है जी, कोई नवी गल है जी, कर जा ही हल है जी, जदों लोड़ पै जावे। रब रखा जी।

सी तू आप उक चले मैनू की मनोना सी तू भी रुस चले मैनू समझौंदा सी तू आप उक चले जग वेखता तमाशा चल लाओ कौन दे आपा तो मेर उस बैठे था मनाऊ कौन दे जे आपा तो मेर उस बैठे था मनाऊ कौन दे मनाऊ कौन दे ना नसीब मैनू

0: अब है था तब था ये मौसम अलबेला, मेरे संग संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग जी करता है वापस।
1: वादी चर्च एक

कि इस मेले कैसे रहूं अकेला, मेरे संग संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला।

चंद्रा जदो भी चढ़ आवे हाय वे मेरी जान सुकदी तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा गल सुन दिल तारा तेनू कहना नी दुबारा हूँ।

तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।